0: कुछ उनकी सुने, कुछ अपनी कहें, आइए दीवान खाना में चलें।
1: यह है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना के सामीन को आदाब। आज हम गुज़श्ता हफ्ते नशे करदा रिपोर्ट का दूसरा हिस्सा नशे करेंगे।
0: पहले तो रिपोर्ट के गुज़श्ता हिस्से का मुख्तसर तारीफ मुझसे सुन लीजिए।
2: गुज़श्ता हफ्ते हमने जिक्र किया था कि अवाखिर अप्रैल में पाकिस्तान से महकमा समाजी बहबूद हुकूमत पंजाब में सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद के मसले से निमटने वाले 11 अफसरान जापान बैन अल-अक़वामी तआवुन एजेंसी जायका के ज़ेर-ए-एहतमाम ट्रेनिंग कोर्स में शिरकत के लिए जापान आए थे।
1: जी सामिन, आपको याद होगा गुज़श्ता हफ्ते हमने जाना कि जापान और पाकिस्तान दोनों मिलकर पाकिस्तान में सिन्फी तशद्दुद से निमटने के लिए क्या कोशिशें कर रहे हैं।
0: और रिपोर्ट से हमें पता चला कि मुतासरीन के आदाद व शुमार क्या हैं और सिन्फी तशद्दुद की समाजी और नफसियाती वजूहात क्या हैं। और अब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि इसी मौजू को आगे कैसे बढ़ाएंगे खलील साहब।
2: जी बिल्कुल, आज इस दूसरे हिस्से में सिन्फी तशद्दुद के मुतासरीन की इमदाद के हवाले से हम बात करेंगे। तो राबिया उस्मान साहिबा जो हैं वो लाहौर की डिस्ट्रिक्ट वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर हैं, वो भी जायका के ज़ेर-ए-एहतमाम इस तरबियती कोर्स में शरीक थीं। तो मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि सिन्फी तशद्दुद से मुतासर मर्द या खातून उनके इदारे से राबता कैसे कर सकती है और ऐसे अफराद को उनका इदारा क्या मदद फराहम करता है। तो उन्होंने मुझे बताया,
3: हमारा जो सेंटर है वो वॉक इन सेंटर है 9 बजे से लेके 5 बजे तक, और वो उनको किसी पेपर या अपॉइंटमेंट की ज़रूरत नहीं है। अगर वो मुसीबत का शिकार है तो वो हमारे दफ्तर आए और हमारी पूरी टीम है वो अपना मसला बताएं और हम साथ ही उनका काम टेकअप कर सकते हैं। सर्विसेज जो है हमारी वो ये हैं कि उसमें सबसे पहले काउंसलिंग है, उनको उनके राइट्स के बारे में बताया जाता है। अगर उनकी कोई इमरजेंसी सिचुएशन है तो उनको फ़ौरन जो है मेडिकल लीगल एग्ज़ाम है, FIR रजिस्ट्रेशन है, फ़र्स्ट एड है, वो चीज़ें हम उनको प्रोवाइड करते हैं। उसके अलावा जो भी तशद्दुद का शिकार ख़वातीन को मदद चाहिए होती है, जैसे उसको उसके कानूनी

0: राइट्स का बताना है, कानूनी हकूक का बताना है, वो हमारे लिए हमारे पास वकील मौजूद हैं, हमारे पास साइकोलॉजिस्ट मौजूद हैं जो उनका इनिशियल उसका सेशन करती हैं कि क्या ये बहुत डिप्रेस तो नहीं है, क्या ये अपने आप को नुकसान तो नहीं पहुंचाएंगी, क्या ये फैसला लेने की पोजीशन में है। तो वो सब इनिशियल जितनी भी सर्विसेज हैं साइकोलॉजिस्ट की, लॉयर की, काउंसलर की, वो सब उसको प्रोवाइड की जाती हैं। अगर उसको शेल्टर चाहिए रहने के लिए, महफूज जगह चाहिए, तो उसके लिए हम उसको शेल्टर में भी रेफर करते हैं। और हमारा एक 1737 हेल्पलाइन है
1: अच्छा
0: और उस पर कॉल करती हैं वो, और वो जो भी मशवरा है, काउंसलिंग है, एडवाइस है, उन्होंने अपना मसला शेयर करना है और पूछना है कि हम क्या कर सकते हैं, तो वो कंप्लीट गाइडेंस उनको हम टेलीफोन कॉल पे भी दे देते हैं।
2: भई, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि इतना सारा ख्याल रखा जाता है। अब खलील साहब, मैं ये जानना चाह रही थी कि इसकी फीस भला कितनी होगी, इतने सारे मशवरे हैं।
1: कैसी फीस मुहतरमा भाई, वो ये तमाम खिदमात मुफ्त फराहम करते हैं, चाहे मुतासरा खातून माशी तौर पर कमजोर हो या ना हो।
2: अच्छा
3: जी, चले ये मसला तो हल हो गया, लेकिन हमारे ख्याल में एक और मसला, बल्कि मेरे ख्याल में एक और मसला मौजूद है।
2: वो क्या खदीजा?
3: जब ये मुतासरा फर्द या खातून जो भी हैं वो फोन करे, तो ये भी तो हो सकता है और मुमकिन है कि तशद्दुद करने वाला शख्स या कोई और सुन ले, इससे तो मसला पैदा हो सकता है।
1: इस हवाले से मैंने राबिया साहिबा से पूछा तो उन्होंने बताया कि वो लोग एक ऐप बना रहे हैं जिसके तवसुत से मुतासरा खातून अब चैट के ज़रिए भी उनसे राबता कर सकती हैं, तो ताकि कोई उनकी आवाज़ ना सुन सके और वो अपना मसला भी पहुंचा दें।
2: हाँ, ये भी अच्छा तरीका है और अल्लाह करे ऐसा ही हो। वैसे मुझे ये बताइए कि पनागाह में उन्हें किस तरह की सहूलियात मिलती हैं? असल में मेरा ख्याल है कि जिस्मानी या जहनी तशद्दुद किसी भी इंसान को बड़ा मुतासिर करता है, और मुतासरा खवातीन जो हैं उनका माहरीन की ज़ेर निगरानी ख्याल रखा जाना चाहिए।
1: जी दुरुस्त कहा वसीमा साहब आपने। मैंने चीफ साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफ्सियात से पूछा कि मुतासर अफराद का ख्याल कैसे रखा जाता है और नफ्सियाती मदद कैसे की जाती है।
4: इसमें सबसे पहले जब जिस किसी भी तरह का जब तशद्दुद होता है तो ख्वातीन जो हैं वो एक ट्रॉमा का शिकार होती हैं। समटाइम्स वो इन द लॉन्ग रन स्लाइटली चीज़ें बढ़ती बढ़ती यहाँ तक ले आती हैं कि उनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की वजह से भी सफ़र करना पड़ता है। तो बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि वो परेशानी या उस ट्रॉमा में रहते हुए, उस चीज़ों को सफ़र करते हुए साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाती हैं या उससे मुतासिर होती हैं, और उनको उस वक्त स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी और वो वाले सिम्टम्स आ रहे होते हैं जो समटाइम्स उनको समझ भी नहीं आता कि हमने रिपोर्ट कैसे करना है और अपनी परेशानी को ज़ाहिर कैसे करना है। सो उसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट है वो ट्रॉमा काउंसलिंग, और उसके साथ साथ ये अगर ज़रूरत हो तो साइकोथेरेपी की ज़रूरत होती है ताकि उनको साथ साथ मैनेज किया जा सके।
2: अच्छा, सिन्फी तशद्दुद के मुतासरीन को माहरीन नफ्सियात के जरिए इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम की जाती है।
1: जी, इनकी मदद के तरीके में सबसे ज्यादा तवज्जो जो है वो मुतासरा फर्द या खातून पर मरकूज रखी जाती है। ताहम पाकिस्तान के शेल्टर होम में 2 साल तक बहसियत माहिर काम करने वाली उसामी साहिबा ने वहाँ एक मसले का भी मुशाहिदा किया है।
3: अच्छा, वो कौन सा मसला है?
1: मुतासरा अफराद को खुद मुख्तार बनाना ज़रूरी है। उसामी साहिबा ने मुझे बताया कि बहुत सी ऐसी खवातीन से उनका वास्ता पड़ा जो घर जाना या दोबारा शादी करना नहीं चाहती।
2: अच्छा,
1: उन्हें पता चला कि घर छोड़कर आने वाली खवातीन को ख़ानदान की तरफ से कोई मदद नहीं मिलती, इसलिए उन्होंने एक नया निज़ाम मुतारिफ किया ताकि खवातीन के मुस्तकबिल को वुसअत दी जा सके।
5: 結局シェルターの中にいる間っていうのはあのいろいろ精神的に落ち着かないのでなかなか先のことを考えられない。
3: シェルターホームでリハイシパゼルアフラードジャズバーティトーパーカイキスムキムシキラーカシカーホテヘンリハザーオンケリエアプネムスタクベルケバーレメソチナカフィムシキルホタヘンイスリエパナガーセニカルネケバーディオネトランゼーショナルホームヤニアーゼーカーメムスタクリエニムンタキルジョヘンウォキアジャタヘンजो रहने के लिए महफूज और मुस्तहकम मकाम है। वहाँ उन्हें मौका मिलता है कि वो अपनी जहनी सेहत पर तवज्जो मरकूज कर सकें, नए हुनर सीख सकते हैं। वहाँ वो अपने लिए मुस्तकिल रिहाइश का और रोज़गार की तलाश में मदद हासिल कर सकते हैं। ये तो है एक ऐसा निज़ाम जो दरमियानी और तवील मुद्दती बहाली और मदद के लिए तरतीब दिया गया है। हमने पंजाब हुकूमत के महकमा समाजी बहबूद के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया है, जिसमें ना सिर्फ पायलट अजला में काम कर रहे हैं बल्कि इसे दीगर अजला तक वसत देने

0: और मजबूत बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं।
1: यहाँ जापान में ऐसे घरों को स्टेप हाउस कहा जाता है, यानी ऐसा घर जहाँ से बुलंदी और तरक्की का सफर शुरू होता है।
2: यानी जापान में स्टेप हाउस और पाकिस्तान में ट्रांजिशनल होम, खलील साहब इसे कहते हैं सोने पर सुहागा। यानी खवातीन ट्रांजिशनल होम में ना सिर्फ जिस्मानी और जहनी बहाली के लिए वक्त ले सकती हैं, बल्कि अपने मुस्तकबिल की जिंदगी के लिए भी तैयारी कर सकती हैं।
0: अच्छा, उसामी साहिबा ने ट्रांजिशनल होम में हुनर सिखाने की भी बात की, तो मैं ये सोच रही थी कि खवातीन कौन से हुनर सीख सकती हैं और इन हुनरों की अफादियत क्या होगी?
1: जी, रज़िया सुल्ताना साहिबा जो हैं वो ट्रांजिशनल होम्स की इंचार्ज हैं, उन्होंने मुझे तफसीलात बताईं, तो सुनते हैं फिर उन्हीं की ज़बानी।
3: जब उनको सेफ शेल्टर मिलती है, उनको सिक्योरिटी का एहसास होता है, तो उनका कॉन्फिडेंस लेवल खुद बहुत बढ़ जाता है, और जैसे ही ये चीज़ होती है तो फिर वो अपने आप इंडिपेंडेंट होना चाह रही होती हैं, वो कुछ करना चाह रही होती हैं, जिससे वो रिहैबिलिटेशन की तरफ जाएँ, खुद कमाएं, अपने पैरों पे खड़ी हों।
1: अपने पैरों पे उनको खड़ा करने के लिए आप उनको क्या खिदमत फराहम करती हैं?
3: उनके उस हवाले से हमारे पास फिर डिफरेंट तरह के ट्रेनिंग्स हैं, जो कि वही बात है कि सर्वाइवर सेंटर्ड अप्रोच के तहत हम उनको दिलवाते हैं। उसमें डिजिटल मार्केटिंग भी है, उसमें प्रोफेशनल कुकिंग भी है, उसमें टेलरिंग, कटिंग, स्टिचिंग वाली ट्रेनिंग भी है, उसमें म्यूटेशन भी है। तो ये फिर, और जो ये तो उन खवातीन के लिए जो ये करना चाहें, इसके अलावा अगर पढ़ी लिखी खवातीन कहीं जॉब करना चाह रही होती हैं, तो उसके लिए फिर हम उनके लिए जॉब के लिए जगह भी देखते हैं, जैसे किसी प्राइवेट स्कूल वगैरह में करवा दी।
2: किसी ज़माने में पाकिस्तानियों के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट अब रफ्ता रफ्ता कदम जमाता लगता है।
1: बिल्कुल, रज़िया सुल्ताना साहिबा के मुताबिक यहाँ से हुनर सीखकर एक खातून अब शेफ हैं और कुछ तो टीचर बन गई हैं, और अपने पांव पर खड़े होने के बाद भी ये इदारा उनकी खबरगिरी करता रहता है।
0: अच्छा, इसका मतलब तो यह है कि कामयाबी की कहानियां भी हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जापान से शुरुआत जो है, इसे कोई ऐसा जो है आइडियाज इनको मिला यहाँ पर जो आए हुए शुरुआत हैं कि नहीं, जिन्हें वो पाकिस्तान में खुद आजमा सकें?
1: जी बिल्कुल, ऐसे दो आइडियाज के बारे में मुनीजा साहिबा ने मुझे बताया।
4: बहुत सारे नए कॉन्सेप्ट्स हमने यहाँ पे देखे, इम्प्लीमेंटेशन देखी जो जीबीवी प्रिवेंशन और जीबीवी मैनेजमेंट से रिलेटेड वहाँ सर्विसेज मौजूद थी। अनलर्न का कॉन्सेप्ट जिसमें हमने मैन एंगेजमेंट और उसको परपेट्रेटर्स की ट्रेनिंग या रिहैबिलिटेशन किस तरीके से करनी है, उनको काउंसिल कैसे करना है, उसकी इंगेजमेंट कैसे रिक्वायर्ड है, कहीं पे भी जहाँ पे एक कंट्रोलिंग बिहेवियर है या एक माइंडसेट है कि हम वी आर सपोज टू कंट्रोल द अदर पर्सन और ऑन द बेसिस ऑफ द जेंडर, तो वहाँ पे वो चीज़ ज़्यादा प्रमोट होती है और ज़्यादा एग्रेवेट होती है, जहाँ पे उस माइंडसेट को चेंज करने की ज़रूरत होती है।
1: आखिरी दिन तरबियती कोर्स के शुरका ने अपना एक्शन प्लान या मुस्तकबिल के लिए लाहे अमल पेश किया, और उनमें से आधे से ज़्यादा लोगों ने तशद्दुद करने वाले पर तवज्जो मरकूज़ करने की बात की, जिसे विक्टिमाइजर अप्रोच कहा जाता है।
2: वैसे खलील साहब, ये बड़ी इत्मीनान बख्श बात है, जैसे कि रज़िया सुल्ताना साहिबा ने कहा कि खवातीन को महफूज पनागाह फराहम करना तरजीह है, लेकिन इस मसले के हल के लिए वजूहात पर तवज्जो मरकूज करना ही बुनियादी तरीक़ाकार है।
1: जी बिल्कुल, उसामी साहिबा के भी यही ख्यालात हैं। उन्होंने ये भी कहा कि तशद्दुद या इस्तेहसाल करने वालों तक रसाई जापान में भी एक मसला है।
2: अरे अच्छा,
1: तो उम्मीद है कि दोनों ममालिक तशद्दुद करने वालों के लिए भी कोई प्रोग्राम तैयार कर पाएंगे ताकि सिन्फी तशद्दुद की रोकथाम में मदद मिल सके।
0: बिल्कुल, मैं तो इत्तफाक करती हूँ उस बात से। अच्छा, बाकी जो है वो दूसरा आइडिया क्या है जो उन्हें जापान के दौरे से मिला,
1: तो सुनते हैं फिर मुनीजा साहिबा की ही जुबानी।
4: अगेन वी लर्न द रोल ऑफ बाईस्टैंडर्स, उसमें उनको इंगेज करना और वो इन्फॉर्मेशन और मैसिव अवेयरनेस करनी कि हर बंदे को पता हो। अगेन वी शुड नो द लॉज, वी शुड बी अवेयर ऑफ दी सर्विसेज प्रोवाइडेड इन द अक्रॉस सॉरी विद इन आवर विसिनिटी, जो जो सर्विसेज जो जो मौजूद हैं, लॉ कहाँ है, क्या राइट्स हैं, एवरी वन शुड बी अवेयर ऑफ दैट। उसमें जो इम्प्लीमेंटेशन है वो ये कि हम कम्युनिटी में वॉलंटियर्स और इंटर्नशिप प्रोग्राम्स के थ्रू यूथ इंगेजमेंट करने का प्लान कर रहे हैं, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा उन बच्चों को तैयार करें जो कि हमारे एम्बेसडर्स बने और जो साइकोलॉजिकल एटलीस्ट साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकें, और हम प्रिवेंशन प्लान के ऊपर काम करें जिसमें हम पर्टिकुलरली जो हमने यहाँ पर चीज़ देखी डेटिंग वायलेंस से रिलेटेड, वो अक्रॉस द ग्लोब दैट इज़ नोन एज इंटरमेट पार्टनर वायलेंस, तो हम उसके ऊपर काम करने के लिए यूथ को प्रिपेयर करेंगे ताकि वो एक प्रिवेंटिव लेवल पे चीज़ें हम इम्प्रूव कर सकें।
1: इस ट्रेनिंग के शुरका ने ट्रेनिंग के दौरान एक वर्कशॉप में शिरकत की जिसका अहतमाम तलबा रजाकारों और मुलाजमत पेशा अफराद की तंजीम ने किया था, तो वहाँ से उन्हें बाई स्टैंडर यानी मौके पर मौजूद सुलह की कोशिश करने वाले अफराद के बारे में इल्म हुआ।
0: अच्छा, तो ये अब एक नई इस्तलाह है, यानी इसका मतलब है कि हम भी बाई स्टैंडर हो सकते हैं।
1: जी, और मुनीजा साहिबा ने इस वर्कशॉप से ये आइडिया लिया और उन्होंने महसूस किया कि नौजवान नस्ल सिन्फी तशद्दुद के खात्मे के लिए एक मुहरिक क़ुव्वत बन सकती है।
2: मुझे पूरी उम्मीद है कि उनकी कोशिशों का अच्छा सिला मिलेगा और दुआ है कि सिन्फी तशद्दुद के खात्मे का प्रोजेक्ट ट्रांजिशनल होम और उनके नए इकदामात ना सिर्फ पंजाब बल्कि पंजाब से बाहर भी अपने असरात दिखाएं।
0: बस हमारी सबकी यही दुआ है कि इन सब की काविशें ज़रूर रंग दाएं और सिन्फ की बुनियाद पर तशद्दुद की शिकार ना सिर्फ खवातीन बल्कि माशरे के हर मुतासर फर्द को अमान मिल सके।
1: तो सामीन, दो हिस्सों पर मबनी रिपोर्ट आपने सुनी, आप इस बारे में हमें अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा, आपका फीडबैक हमारे लिए इंतहाई अहम है।
2: और दोस्तों, हम अपनी रिपोर्ट का इख्तिताम केंशी योनेज़ू के गाने सायोनारा माता इत्सु का यानी अलविदा फिर मिलेंगे कभी ना कभी पर करेंगे। ये गाना NHK के 2024 के मॉर्निंग ड्रामा तोरा नी सुबासा के लिए लिखा गया था। तोरा नी सुबासा ये एक कहावत है कि शेर जैसे मजबूत किसी किरदार को पर देकर उसकी कुव्वते परवाज को मजीद बढ़ाना।
0: मैं बताती चलूं कि सीरीज की मरकजी किरदार का निक नेम तोरा चा है, जो जापान की पहली खातून वकील से मुतासिर होकर बनाई गई। इस औरत की कहानी है जिसने शोवा के हंगामा खेज दौर में अपने साथियों के साथ मिलकर कानूनी दुनिया में एक ऐसा रास्ता बनाया जो पहले मौजूद ही नहीं था।
2: तो आज की रिपोर्ट की मुनासिबत से गीत सुनते हैं सायोनारा माता इत्सु का, आइए सब मिलकर लुत्फ उठाएं।

ये एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है यूटीसी अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 18 मई सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सकू और वरुण तोमर

सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मांग की है कि वो युद्ध समाप्त करने से जुड़ी अमेरिकी शर्तें मान ले ताकि कोई समझौता किया जा सके। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि समय तेजी से बीत रहा है। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ईरान के लिए समय तेजी से बीत रहा है और उन्हें जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए, वरना वो नहीं बचेंगे। अमरीकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने ट्रंप के एक फोन कॉल के हवाले से कहा, हम समझौता करना चाहते हैं, उन्होंने हमारी सारी शर्तें नहीं मानी हैं, उन्हें वो माननी होंगी, अन्यथा उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान सरकार की करीबी फार्स न्यूज एजेंसी ने रविवार को बताया कि अमरीका ने ईरान के नवीनतम प्रस्तावों के जवाब में 5 शर्तें रखी हैं। एजेंसी के अनुसार ईरान ने सभी मोर्चों पर, विशेष रूप से लेबनान में, युद्ध समाप्त करने, ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने, ईरान की जब्त परिसंपत्तियों को मुक्त करने, युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान की संप्रभुता को मान्यता देने की मांग की है। मीडिया एजेंसी के अनुसार वॉशिंगटन ने 5 शर्तें रखी थीं, जिनमें मुआवजा न देने, ईरान की जब्त परिसंपत्तियां मुक्त न करने, अमेरिका को ईरान का 400 किलो संवर्धित यूरेनियम सौंपने, ईरान की केवल एक परमाणु सुविधा को सक्रिय रहने देने और युद्ध समाप्ति शामिल हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन हमले के कारण एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के परिसर में स्थित एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई है। अधिकारियों ने रविवार को घोषणा की कि देश के पश्चिमी हिस्से में स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आग से संयंत्र की महत्वपूर्ण प्रणालियों पर कोई असर नहीं पड़ा है और सभी इकाइयां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। खबरों के अनुसार रेडियोधर्मी सुरक्षा स्तरों में कोई बदलाव नहीं आया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पश्चिमी सीमा की ओर से 3 ड्रोन देश में घुसे, जिनमें से 2 को सफलतापूर्वक मार गिराया गया, लेकिन तीसरा ड्रोन जनरेटर से जा टकराया। मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच जारी है। गौरतलब है कि ईरान द्वारा यूएई पर कई हमले किए गए हैं। इस महीने की शुरुआत में यूएई ने घोषणा की थी कि ईरान ने उस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC और युगांडा में फैले इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय मानते हुए जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। रविवार को DRC के पूर्वोत्तरी प्रांत इटूरी में इबोला के प्रकोप की पुष्टि होने के बाद ये घोषणा की गई। अफ्रीकी संघ की जन स्वास्थ्य एजेंसी ने 87 संदिग्ध मौतों की सूचना दी है। WHO के अनुसार DRC से युगांडा गए लोगों में से 2 में संक्रमण का पता चला है। उसका ये भी कहना है कि शुरुआती नमूनों में उच्च संक्रमण दर को देखते हुए ये प्रकोप मौजूदा अनुमान से कहीं अधिक व्यापक हो सकता है, जिससे इस प्रकोप के स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर फैलने का गंभीर खतरा है। WHO का कहना है कि अभी ये प्रकोप महामारी के स्तर तक नहीं पहुंचा है। इटूरी प्रांत कई अहम खनिज खदानों वाले उस क्षेत्र के निकट है जिस पर सरकार विरोधी ताकतों का प्रभावी नियंत्रण है। WHO ने प्रकोप का जायजा लेने और प्रतिक्रिया प्रयासों में समन्वय लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। टोक्यो के उत्तर में तोचिगी प्रीफेक्चर में एक परिवार पर हुए जानलेवा हमले के सिलसिले में जापान पुलिस ने 20 से अधिक उम्र के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जांचकर्ताओं का मानना है कि कम से कम एक और व्यक्ति ने संदिग्धों को निर्देश दिए थे। बृहस्पतिवार को तोचिगी प्रीफेक्चर के खामिनोखावा नगर में कई लोगों ने एक मकान में घुसपैठ कर एक 69 वर्षीय महिला की चाकू मारकर हत्या की और उसके 2 वयस्क बेटों को घायल कर दिया जो खेत में काम करके घर लौटे थे। पुलिस ने रविवार को 25 वर्षीय ताकेमाए मियू को डकैती और हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया जो टोक्यो के निकट खानागावा प्रीफेक्चर की रहने वाली है। पुलिस ने उसे योकोहामा शहर स्थित एक होटल के कमरे से हिरासत में लिया जहां वो अपनी 7 माह की बेटी के साथ ठहरी थी। इससे पहले रविवार को ही पुलिस ने इस महिला के 28 वर्षीय पति ताकेमाए काइतो को टोक्यो के हानेदा हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था जहां से वो विदेश जाने की फिराक में था। पुलिस के अनुसार इस मामले में एक अज्ञात और अस्थायी आपराधिक गिरोह का हाथ है। इस तरह के गिरोह सोशल मीडिया के जरिए हमलावरों की भर्ती करते हैं। इस मामले में खानागावा प्रीफेक्चर के 4 छात्रों को डकैती और हत्या के संदेह में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। माना जा रहा है कि हाईस्कूल में पढ़ने वाले इन 16 वर्षीय छात्रों ने हमला किया था। अधिकारियों का मानना है कि रविवार को गिरफ्तार किए गए दंपति ने इन छात्रों को निर्देश दिए थे। जापान की अर्थव्यवस्था पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के दुष्प्रभावों को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण देश की मानक दीर्घकालिक ब्याज दर 29 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सोमवार को जापान के 10 वर्षीय सरकारी बंधपत्रों की ब्याज दर 2.8% तक पहुंच गई। ब्रोकरेज कंपनी जापान बॉन्ड ट्रेडिंग का कहना है कि इससे पहले ये स्तर मई 1997 में देखा गया था। निवेशकों को चिंता है कि तेल की उच्च कीमतों के कारण व्यापार घाटा हो सकता है। पश्चिमी टोक्यो के ओकुतामा नगर में पहाड़ी रास्ते पर चलते समय एक व्यक्ति भालू के हमले में घायल हो गया है। पुलिस का कहना है कि दमकल कर्मियों को रविवार दोपहर करीब 12 बजे नगर के साकाई क्षेत्र में हुए इस हमले की सूचना मिली। व्यक्ति ने अन्य लोगों को बताया कि उस पर एक भालू ने हमला किया है। कथित तौर पर व्यक्ति के चेहरे और हाथों पर गंभीर चोटें आई हैं। खबरों के अनुसार अस्पताल ले जाते समय वो होश में था और उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। नगर अधिकारियों का कहना है कि ये व्यक्ति अकेला जा रहा था कि तभी उसके सामने भालू आ गया। टोक्यो महानगर सरकार द्वारा संकलित भालू नक्शे के अनुसार अप्रैल से ओकुतामा नगर में 7 जगहों पर भालू देखे गए हैं, जिनमें से एक जगह साकाई क्षेत्र है जहां 4 मई को भालू देखा गया। खबरों के मुताबिक ये हमला आबादी वाले इलाके से लगभग 1 किलोमीटर दूर हुआ। इसी के साथ एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है। ये है एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें एनएचके वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 12वें पाठ में हम सीखेंगे राय बताना और समझाना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस में ही रहने वाली चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ टोक्यो के लोकप्रिय पर्यटन स्थल असाकुसा में आई है। अब वो सेंसोजी मंदिर में है और तावीजें देख रही है।
0: जापानी भाषा में तावीज को ओमामोरी कहते हैं और उन्हें शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं 12वें पाठ की बातचीत।
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: ताम ने एक तावीज उठाया जिसमें घंटी लगी हुई थी और कहा,
2: कोरे कावाई ओमामोरी देस ने।
1: ये प्यारा तावीज है ना?
0: मिया ने सहमति दिखाते हुए कहा,
3: होंतो कावाई।
1: सचमुच प्यारा है।
0: ताम को एक और तावीज भी पसंद आया,
2: कोरे मो ई देस ने।
1: ये भी अच्छा है।
0: फिर कर्मचारी ने बताया,
4: सोरे वा एनमुसुबी नो ओमामोरी देस।
1: वो एनमुसुबी का तावीज है। 800 yen का है।
0: ताम को ठीक से समझ नहीं आया कि कर्मचारी ने क्या कहा है।
1: एन्मुसु।
0: तब मिया ने समझाया,
3: एन्मुसुबी, कोइबितो गा देकिरु ओमामोरी।
1: एन्मुसुबी, प्रेमी मिलने का तावीज।
0: ये सुनकर ताम ने कर्मचारी से वो तावीज देने को कहा।
2: जा, कोरे ओ कुदासाई।
1: तो फिर ये दे दीजिए।
0: ओमामोरी तरह तरह के होते हैं, व्यापार में सफलता के लिए, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए या परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए। इनके अलावा यहाँ बहुत तरह के ओमामोरी और भी मिलते हैं। ताम ने जोड़ी बनाने वाला तावीज चुना।
1: आज का मुख्य वाक्य है
2: कावाई ओमामोरी देस ने,
1: यानी प्यारा तावीज है ना। इस वाक्य को याद करके आप अपनी राय बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
6: कवाई
0: एक विशेषण है और इसका अर्थ है प्यारा।
6: ओमामोरी
0: का मतलब है तावीज।
6: देस
0: का अर्थ हिंदी के है जैसा होता है और उसके बाद
6: ने
0: लगाने का अर्थ है कि आप दूसरे व्यक्ति की सहमति की उम्मीद करते हैं, यानी आपको लगता है कि उसकी राय भी आपकी राय की तरह होगी।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेषण
6: कवाई
1: की अंतिम ध्वनि ई है। इस तरह जिन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है उन्हें ई विशेषण कहते हैं। विशेषण उस संज्ञा से पहले लगता है जिसकी वो विशेषता बताता है, जैसे
6: कवाई ओमामोरी,
1: यानी प्यारा तावीज।
0: लेकिन मिया के वाक्य में संज्ञा नहीं है। उसने कहा होंतो कवाई, यानी सचमुच प्यारा है।
1: इस तरह ई विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना भी हो सकता है, जैसे
6: कवाई
1: यानी प्यारा है। अंत में
6: देसने
1: जोड़ने से बनता है
6: कवाई देसने।
1: इससे वाक्य और विनम्र बन जाता है।
0: आज की बातचीत में ताम का एक और वाक्य है
6: कोरे मो ई देसने,
0: यानी ये भी अच्छा है। इसमें एक और ई विशेषण आया है जो ई यानी अच्छा है।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
6: कवाई, कवाई देसु ने, कवाई ओमामोरी देसु ने।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें दो लोग एक टी शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
7: このTシャツ。
8: 面白いですね。
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
7: मीते कोनो टीशर्ट,
1: देखो ये टी शर्ट।
0: यहाँ
6: मीते
0: क्रिया
6: मीरु
0: यानी देखना का ते रूप है। किसी को अनौपचारिक तरीके से कुछ दिखाते समय इसका इस्तेमाल होता है।
6: कोनो
0: का अर्थ है ये और
6: टी शर्ट
0: का मतलब है टी शर्ट।
1: उसके बाद आदमी ने कहा,
8: ओमोशिरोई देसुने,
0: दिलचस्प है ना।
1: इस वाक्य में ई विशेषण
6: ओमोशिरोई
1: यानी दिलचस्प या मजेदार का इस्तेमाल हुआ है। अंत में ने लगाकर बोलने वाला सुनने वाले की सहमति की उम्मीद कर रहा है।
0: तो आप भी सुनिए और दोहराइए,
6: ओमोशिरोई ओमोशिरोई देसुने।
1: अब राय बताने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आप एक बेकरी में हैं जो स्वादिष्ट ब्रेड के लिए प्रसिद्ध है। वहां आप ये देखकर चौंक गए कि ब्रेड बहुत बड़ी है, तो आपको बोलना

0: बड़ी है ना? बड़ी को जापानी भाषा में कहते हैं
1: ओकी ओकी।
0: तो कोशिश कीजिए।
2: ओकी देसु ने।
3: अब मान लीजिए कि आप एक दुकान में हैं जहां आपने बहुत सुंदर बटुआ देखा है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आप बोलना चाहते हैं महंगा है ना? महंगा को जापानी भाषा में कहते हैं
1: थकाई थकाई।
3: तो कोशिश कीजिए।
2: थकाई देसु ने।
0: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
4: कोरे ओ कुदासाई।
1: कोरे ओ कुदासाई
3: का अर्थ है ये दे दीजिए।
1: कुदासाई
3: का मतलब है कृपया दीजिए। खरीदारी करते समय अपनी पसंद की चीज की तरफ इशारा करते हुए ये शब्द बोल सकते हैं।
0: या रेस्टोरेंट में हो तो मेन्यू में अपनी पसंद के व्यंजन की तरफ इशारा कीजिए और कहिए
1: कोरे ओ कुदासाई।
0: रेस्टोरेंट के कर्मचारी आपकी बात समझ जाएंगे।
3: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
1: कोरे ओ कुदासाई।
0: तो दोस्तों, अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
4: これ、かわいいお守りですね。
2: 本当、かわいい。
4: これもいいですね。
5: それは縁結びのお守りです。800円になります。
6: 縁結び。
2: 恋人ができるお守り。
4: じゃあ、これをください。
7: トラベルガイド।
3: और अब बारी है अंश घूमे मियाँ के साथ की। आज की बातचीत सेंसोजी मंदिर में हो रही थी, इसलिए आज हम बताएंगे जापान के शिंतो और बौद्ध मंदिरों के बारे में।
0: शिंतो मंदिर यानी श्राइन और बौद्ध मंदिर पूरे जापान में फैले हुए हैं। अधिकतर श्राइनों में जापान के प्राचीन धर्म शिंतो के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जबकि बौद्ध मंदिर बौद्ध धर्म को समर्पित हैं।
3: श्राइन और बौद्ध मंदिर पर्यटकों में भी लोकप्रिय हैं। इसके प्रमुख कारण हैं इन मंदिरों का वास्तुशिल्प, इनमें देखी जा सकने वाली बौद्ध प्रतिमाएं और अन्य कलाकृतियां, और इनके अद्भुत बगीचे।
0: टोक्यो में सेंसोजी मंदिर के अलावा मेजी जिंगू श्राइन लोकप्रिय है। जापान के पश्चिमी क्षेत्र में नारा शहर है, जहां का तोदाईजी मंदिर भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है।
3: इसके अलावा शिमाने प्रीफेक्चर की इजुमो ताइशा श्राइन पौराणिक कथाओं के लिए जानी जाती है।
0: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
3: अगले पाठ में सुनेंगे रोबोट मकान मालकिन हारूजी से ताम की मजेदार बातचीत। तब तक के लिए
0: सायोनारा।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 18 मई सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सकू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मांग की है कि वो युद्ध समाप्त करने से जुड़ी अमरीकी शर्तें मान ले ताकि कोई समझौता किया जा सके। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि समय तेजी से बीत रहा है। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ईरान के लिए समय तेजी से बीत रहा है और उन्हें जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए, वरना वो नहीं बचेंगे। अमरीकी समाचार वेबसाइट

एट एक्सियोस ने ट्रंप के एक फोन कॉल के हवाले से कहा, हम समझौता करना चाहते हैं, उन्होंने हमारी सारी शर्तें नहीं मानी हैं, उन्हें वो माननी होंगी अन्यथा उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान सरकार की करीबी फार्स न्यूज एजेंसी ने रविवार को बताया कि अमेरिका ने ईरान के नवीनतम प्रस्तावों के जवाब में 5 शर्तें रखी हैं। एजेंसी के अनुसार ईरान ने सभी मोर्चों पर, विशेष रूप से लेबनान में, युद्ध समाप्त करने, ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने, ईरान की जब्त परिसंपत्तियों को मुक्त करने, युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने और होर्मूज जलडमरू मध्य पर ईरान की संप्रभुता को मान्यता देने की मांग की है। मीडिया एजेंसी के अनुसार वॉशिंगटन ने 5 शर्तें रखी थीं, जिनमें मुआवजा न देने, ईरान की जब्त परिसंपत्तियां मुक्त न करने, अमरीका को ईरान का 400 किलो संवर्धित यूरेनियम सौंपने, ईरान की केवल एक परमाणु सुविधा को सक्रिय रहने देने और युद्ध समाप्ति शामिल हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन हमले के कारण एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के परिसर में स्थित एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई है। अधिकारियों ने रविवार को घोषणा की कि देश के पश्चिमी हिस्से में स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आग से संयंत्र की महत्वपूर्ण प्रणालियों पर कोई असर नहीं पड़ा है और सभी इकाइयां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। खबरों के अनुसार रेडियोथर्मी सुरक्षा स्तरों में कोई बदलाव नहीं आया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पश्चिमी सीमा की ओर से 3 ड्रोन देश में घुसे, जिनमें से 2 को सफलतापूर्वक मार गिराया गया, लेकिन तीसरा ड्रोन जनरेटर से जा टकराया। मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच जारी है। गौरतलब है कि ईरान द्वारा यूएई पर कई हमले किए गए हैं। इस महीने की शुरुआत में यूएई ने घोषणा की थी कि ईरान ने उस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC और युगांडा में फैले इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय मानते हुए जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। रविवार को DRC के पूर्वोत्तरी प्रांत इटूरी में इबोला के प्रकोप की पुष्टि होने के बाद ये घोषणा की गई। अफ्रीकी संघ की जन स्वास्थ्य एजेंसी ने 87 संदिग्ध मौतों की सूचना दी है। WHO के अनुसार DRC से युगांडा गए लोगों में से 2 में संक्रमण का पता चला है। उसका ये भी कहना है कि शुरुआती नमूनों में उच्च संक्रमण दर को देखते हुए ये प्रकोप मौजूदा अनुमान से कहीं अधिक व्यापक हो सकता है, जिससे इस प्रकोप के स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर फैलने का गंभीर खतरा है। WHO का कहना है कि अभी ये प्रकोप महामारी के स्तर तक नहीं पहुंचा है। इटूरी प्रांत कई अहम खनिज खदानों वाले उस क्षेत्र के निकट है, जिस पर सरकार विरोधी ताकतों का प्रभावी नियंत्रण है। WHO ने प्रकोप का जायजा लेने और प्रतिक्रिया प्रयासों में समन्वय लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। टोक्यो के उत्तर में तोचिगी प्रीफेक्चर में एक परिवार पर हुए जानलेवा हमले के सिलसिले में जापान पुलिस ने 20 से अधिक उम्र के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जांचकर्ताओं का मानना है कि कम से कम एक और व्यक्ति ने संदिग्धों को निर्देश दिए थे। बृहस्पतिवार को तोचिगी प्रीफेक्चर के खामिनोखावा नगर में कई लोगों ने एक मकान में घुसपैठ कर एक 69 वर्षीय महिला की चाकू मारकर हत्या की और उसके 2 वयस्क बेटों को घायल कर दिया जो खेत में काम करके घर लौटे थे। पुलिस ने रविवार को 25 वर्षीय ताकेमाए मियू को डकैती और हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया जो टोक्यो के निकट खानागावा प्रीफेक्चर की रहने वाली है। पुलिस ने उसे योकोहामा शहर स्थित एक होटल के कमरे से हिरासत में लिया जहां वो अपनी 7 माह की बेटी के साथ ठहरी थी। इससे पहले रविवार को ही पुलिस ने इस महिला के 28 वर्षीय पति ताकेमाए काइतो को टोक्यो के हानेदा हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था जहां से वो विदेश जाने की फिराक में था। पुलिस के अनुसार इस मामले में एक अज्ञात और अस्थायी आपराधिक गिरोह का हाथ है। इस तरह के गिरोह सोशल मीडिया के जरिए हमलावरों की भर्ती कर

0: करते हैं। इस मामले में खानागावा प्रीफेक्चर के 4 छात्रों को डकैती और हत्या के संदेह में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। माना जा रहा है कि हाईस्कूल में पढ़ने वाले इन 16 वर्षीय छात्रों ने हमला किया था। अधिकारियों का मानना है कि रविवार को गिरफ्तार किए गए दंपति ने इन छात्रों को निर्देश दिए थे। जापान की अर्थव्यवस्था पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के दुष्प्रभावों को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण देश की मानक दीर्घकालिक ब्याज दर 29 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सोमवार को जापान के 10 वर्षीय सरकारी बंधपत्रों की ब्याज दर 2.8% तक पहुंच गई। ब्रोकरेज कंपनी जापान बॉन्ड ट्रेडिंग का कहना है कि इससे पहले ये स्तर मई 1997 में देखा गया था। निवेशकों को चिंता है कि तेल की उच्च कीमतों के कारण व्यापार घाटा हो सकता है। पश्चिमी टोक्यो के ओकुतामा नगर में पहाड़ी रास्ते पर चलते समय एक व्यक्ति भालू के हमले में घायल हो गया है। पुलिस का कहना है कि दमकल कर्मियों को रविवार दोपहर करीब 12 बजे नगर के साकाई क्षेत्र में हुए इस हमले की सूचना मिली। व्यक्ति ने अन्य लोगों को बताया कि उस पर एक भालू ने हमला किया है। कथित तौर पर व्यक्ति के चेहरे और हाथों पर गंभीर चोटें आई हैं। खबरों के अनुसार अस्पताल ले जाते समय वो होश में था और उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। नगर अधिकारियों का कहना है कि ये व्यक्ति अकेला जा रहा था कि तभी उसके सामने भालू आ गया। टोक्यो महानगर सरकार द्वारा संकलित भालू नक्शे के अनुसार अप्रैल से ओकुतामा नगर में 7 जगहों पर भालू देखे गए हैं, जिनमें से एक जगह साकाई क्षेत्र है जहां 4 मई को भालू देखा गया। खबरों के मुताबिक ये हमला आबादी वाले इलाके से लगभग 1 किलोमीटर दूर हुआ। इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
1: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 12वें पाठ में हम सीखेंगे राय बताना और समझाना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस में ही रहने वाली चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ टोक्यो के लोकप्रिय पर्यटन स्थल असाकुसा में आई है। अब वो सेंसोजी मंदिर में है और तावीजें देख रही है।
0: जापानी भाषा में तावीज को ओमामोरी कहते हैं और उन्हें शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं 12वें पाठ की बातचीत।
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: ताम ने एक तावीज उठाया जिसमें घंटी लगी हुई थी और कहा,
2: कोरे कावाई ओ मामोरी देसु ने।
1: ये प्यारा तावीज है ना?
0: मिया ने सहमति दिखाते हुए कहा,

0: तो कवाई
1: सचमुच प्यारा है।
2: ताम को एक और तावीज भी पसंद आया।
0: これもいいですね。
1: ये भी अच्छा है।
2: फिर कर्मचारी ने बताया
3: それは縁結びのお守りです。
1: वो एन मुसुबी का तावीज है।
3: 800 円になります。
1: 800円का है।
2: ताम को ठीक से समझ नहीं आया कि कर्मचारी ने क्या कहा है।
1: एन मुसु।
2: तब मिया ने समझाया
0: एन मुसुबी कोई भी तोगा देखिर ओ मामोरी।
1: एन मुसुबी प्रेमी मिलने का तावीज।
2: ये सुनकर ताम ने कर्मचारी से वो तावीज देने को कहा।
0: जा कोरे ओ कुदासाई।
1: तो फिर ये दे दीजिए।
2: ओमामोरी तरह तरह के होते हैं, व्यापार में सफलता के लिए, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए या परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए। इनके अलावा यहाँ बहुत तरह के ओमामोरी और भी मिलते हैं। ताम ने जोड़ी बनाने वाला तावीज चुना।
1: आज का मुख्य वाक्य है
0: कवाई ओमामोरी देसु ने,
1: यानी प्यारा तावीज है ना। इस वाक्य को याद करके आप अपनी राय बता सकेंगे।
2: इस वाक्य में
4: कवाई
2: एक विशेषण है और इसका अर्थ है प्यारा।
4: ओमामोरी
2: का मतलब है तावीज।
4: देस
2: का अर्थ हिंदी के है जैसा होता है और उसके बाद
4: ने
2: लगाने का अर्थ है कि आप दूसरे व्यक्ति की सहमति की उम्मीद करते हैं, यानी आपको लगता है कि उसकी राय भी आपकी राय की तरह होगी।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेषण
4: कवाई
1: की अंतिम ध्वनि ई है। इस तरह जिन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है उन्हें ई विशेषण कहते हैं। विशेषण उस संज्ञा से पहले लगता है जिसकी वो विशेषता बताता है, जैसे
4: कवाई ओ मेमोरी
1: यानी प्यारा तावीज।
2: लेकिन मिया के वाक्य में संज्ञा नहीं है। उसने कहा होन तो कवाई यानी सचमुच प्यारा है।
1: इस तरह ई विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना भी हो सकता है, जैसे
4: कवाई
1: यानी प्यारा है। अंत में
4: देसने
1: जोड़ने से बनता है
4: कवाई देसने।
1: इससे वाक्य और विनम्र बन जाता है।
2: आज की बातचीत में ताम का एक और वाक्य है
4: कोरे मो ई देसने,
2: यानी ये भी अच्छा है। इसमें एक और ई विशेषण आया है जो ई यानी अच्छा है।
1: तो सुनिए और दोहराइए
4: कवाई कवाई देसु ने कवाई ओमामोरी देसु ने।
2: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें दो लोग एक टी शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
5: この T シャツ
6: 面白いですね。
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा
5: 見てこの T シャツ
1: देखो ये टी शर्ट।
2: यहाँ
4: 見て
2: क्रिया
4: 見る
2: यानी देखना का ते रूप है। किसी को अनौपचारिक तरीके से कुछ दिखाते समय इसका इस्तेमाल होता है।
4: この
2: का अर्थ है ये और
4: टी शर्ट
2: का मतलब है टी शर्ट।
1: उसके बाद आदमी ने कहा
6: ओमोशिरोई देसु ने,
2: दिलचस्प है ना।
1: इस वाक्य में ई विशेषण
4: ओमोशिरोई
1: यानी दिलचस्प या मजेदार का इस्तेमाल हुआ है। अंत में ने लगाकर बोलने वाला सुनने वाले की सहमति की उम्मीद कर रहा है।
2: तो आप भी सुनिए और दोहराइए
4: ओमोशिरोई ओमोशिरोई देसु ने।
1: अब राय बताने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आप एक बेकरी में हैं जो स्वादिष्ट ब्रेड के लिए प्रसिद्ध है। वहां आप ये देखकर चौंक गए कि ब्रेड बहुत बड़ी है, तो आपको बोलना है बड़ी है ना। बड़ी को जापानी भाषा में कहते हैं
4: ओकी ओकी।
1: तो कोशिश कीजिए
5: ओकी देसु ने।
2: अब मान लीजिए कि आप एक दुकान में हैं जहां आपने बहुत सुंदर बटुआ देखा है लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आप बोलना चाहते हैं महंगा है ना। महंगा को जापानी भाषा में कहते हैं
4: ठकाई 高い。
2: と、कोशिश कीजिए。
5: 高いですね。
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए।
0: これをください。
4: これをください。
2: का अर्थ है ये दे दीजिए।
4: ください。
2: का मतलब है कृपया दीजिए। खरीदारी करते समय अपनी पसंद की चीज की तरफ इशारा करते हुए ये शब्द बोल सकते हैं।
1: या रेस्टोरेंट में हो तो मेन्यू में अपनी पसंद के व्यंजन की तरफ इशारा कीजिए और कहिए
4: これをください।
1: रेस्टोरेंट के कर्मचारी आपकी बात समझ जाएंगे।
2: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए।
4: これをください。
1: तो दोस्तों अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
0: これ、かわいいお守りですね。
7: 本当、かわいい。
0: これもいいですね。
3: それは縁結びのお守りです。800円になります。
0: 縁結び、恋人ができるお守り。じゃあ、これをください。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
2: और अब बारी है अंश घूमे मिया के साथ की। आज की बातचीत सेंसोजी मंदिर में हो रही थी, इसलिए आज हम बताएंगे जापान के शिंतो और बौद्ध मंदिरों के बारे में।
1: शिंतो मंदिर यानी श्राइन और बौद्ध मंदिर पूरे जापान में फैले हुए हैं। अधिकतर श्राइनों में जापान के प्राचीन धर्म शिंतो के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जबकि बौद्ध मंदिर बौद्ध धर्म को समर्पित हैं।
2: श्राइन और बौद्ध मंदिर पर्यटकों में भी लोकप्रिय हैं। इसके प्रमुख कारण हैं इन मंदिरों का वास्तुशिल्प, इनमें देखी जा सकने वाली बौद्ध प्रतिमाएं और अन्य कलाकृतियां, और इनके अद्भुत बगीचे।
1: टोक्यो में सेंसोजी मंदिर के अलावा मेजी जिंगू श्राइन लोकप्रिय है। जापान के पश्चिमी क्षेत्र में नारा शहर है, जहाँ का तोदाईजी मंदिर भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है।
2: इसके अलावा शिमाने प्रीफेक्चर की इजुमो ताइशा श्राइन पौराणिक कथाओं के लिए जानी जाती है।
1: दोस्तों आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
2: अगले पाठ में सुनेंगे रोबोट मकान मालकिन हारूजी से ताम की मजेदार बातचीत। तब तक के लिए
1: सायनारा।

0: ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी पुलिस ने टोक्यो के शिमाल में तोचिगी प्रीफेक्चर में एक खानदान पर जानलेवा हमले के सिलसिले में 20 के बेटे के एक जोड़े को गिरफ्तार कर लिया है। इससे गिरफ्तार अफराद की तादाद 6 हो गई है। तफ्तीशकारों का ख्याल है कि कम अज कम एक और शख्स ने मुश्तबा अफराद को हिदायत दी थी। जुमरात को तोचिगी प्रीफेक्चर के कामिनोकावा कस्बे में मुतअद्दिद अफराद एक घर में घुस गए। एक 69 साल खातून को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया। इसके दो बालिग बेटे उस वक्त जख्मी हो गए जब वो फार्म पर काम करके घर वापस आए। पुलिस ने इतवार को डकैती और कत्ल के इल्जाम में 25 साल थाकेमाई म्यू को गिरफ्तार कर लिया। वो टोक्यो के करीब कानागावा प्रीफेक्चर से है। इसे योकोहामा शहर के एक कारोबारी होटल से हिरासत में लिया गया। वो 7 माह की बेटी के साथ एक कमरे में थी। कबल अजी इसी रोज उसके शौहर को टोक्यो के हनेदा हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। 28 साल थाकेमाई काइतो बैरून मुल्क सफर करने ही वाला था। पुलिस का ख्याल है कि इस केस में एक गुमनाम और वक्ती मुजरिम ग्रोह मुलविस है। ऐसे ग्रोह हमलावरों को भर्ती करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कानागावा प्रीफेक्चर से हाई स्कूल के 4 16 साल तालबे इल्मों को डकैती और कत्ल के शुबे में गिरफ्तार किया गया है। ख्याल किया जाता है कि वो हमला आवर हैं। हुकाम का ख्याल है कि इतवार को गिरफ्तार किए गए जोड़े ने तालबे इल्मों को अहकाम दिए थे। जापान की मईशत पर खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के असरात पर तशवीश में इजाफे ने मुल्क की तवील मुद्दती कलीदी शराय सूद को 29 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया है। जापानी हकूमत के 10 साल बॉन्ड्स का मुनाफा पीर के रोज 2.8% तक पहुंच गया। लेन देन से मुंसलिक कंपनी जापान बॉन्ड ट्रेडिंग का कहना है कि आखिरी बार ये सतह पर मई 1997 में पहुंचा था। सरमायाकारों को तशवीश है कि तेल की कीमतों में इजाफा तिजारती खसारे का बाइस बन सकता है। टोक्यो के मगरिब में वाकया ओकुथामा कस्बे में पहाड़ी रास्ते पर चहलकदमी करने वाला एक शख्स रीछ के हमले से जख्मी हो गया है। पुलिस का कहना है कि फायर फाइटर्स को इतवार के रोज लगभग दोपहर के वक्त करीबी साकाई इलाके में वाकये की इतला देने वाली कॉल मौसूल हुई। इस शख्स को बजाहिर चेहरे और बाजुओं पर शदीद चोटें आईं। उसने दीगर अफराद को बताया कि उस पर रीछ ने हमला किया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जब उसे हवाई जहाज से अस्पताल ले जाया गया तो वो होश में था और उसकी हालत तशवीशनाक नहीं थी। कस्बे के हुकाम का कहना है कि जब इस शख्स पर रीछ ने हमला किया वो अकेला चहलकदमी कर रहा था। टोक्यो बल्दिया उज्मा का मुरतब करदा रीछ देखे जाने की इतलात पर मबनी नक्शा अप्रैल से अब तक ओकुतामा कस्बे में इसकी 7 इतलात दिखा रहा है, जिनमें 4 मई को साकाई इलाके की एक रिपोर्ट भी शामिल है। इतलात के मुताबिक यह हमला आबाद इलाके से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर हुआ है।
1: अब आज की अहम खबरों की शह सुर्खियां। अमरीकी सदर ने ईरान को खबरदार किया है कि वक्त गुजर रहा है और जोर दिया है कि जंग खत्म करने के मुआहदे के लिए वो रियायत दे। मुतहदा अरब अमारात के दारुलहुकूमत अबूधाबी में हुक्काम के मुताबिक एक ड्रोन हमले के नतीजे में एक जौहरी बिजली घर के अहाते में बरकी जनरेटर में आग लग गई। इसके साथ ही एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।

0: आप किया।
1: आइए आज का मकालमा एक बार फिर सुनते हैं।
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
0: आज के सबक का कलीदी जुमला है, बहुत प्यारा तावीज़ है ना?
2: कवाई ओ मामोरी देस ने।
0: अगर आप इसे याद कर लें, तो किसी चीज़ के बारे में अपने तासुर का इजहार कर सकते हैं।
1: अब हम आज के कलीदी जुमले की तशरीह करते हैं। कवाई इसमें सिफत है, इसके मायने हैं प्यारा। ओ मामोरी तावीज़ को कहते हैं। देस जुमले के अख्तिताम को शाइस्ता बनाने वाला लफ्ज़ है, और जुमले के बिल्कुल आखिर में ने उस वक्त लगाते हैं जब आपको तवक्को हो कि मुखातिब आपके एहसासात से इत्तेफाक करेगा। आज का नुक्ता इसमें सिफत के बारे में है। कवाई की तरह जो इसमें सिफत ई पर ख़त्म होते हैं उन्हें ई इसमें सिफत कहा जाता है। इसमें सिफत को जिस इस्म से पहले लगाया जाता है वो उसकी सिफत बयान करते हैं। मसलन कवाई ओ मामोरी यानी प्यारा तावीज़।
0: लेकिन अनवर साहब, मियाँ ने तो कोई इस्म इस्तेमाल ही नहीं किया, उसने तो सिर्फ यूँ कहा हों तो कवाई यानी वाकई बहुत प्यारा है।
1: जी हाँ, ये भी ठीक है, क्योंकि ई इसमें सिफत अकेला भी इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे प्यारा यानी कवाई, इसके साथ देस ने लगाकर कवाई देस ने कहा जाए तो ये ज़्यादा शाइस्ता होगा। आज के मकालमे में ताम ने एक और तावीज़ के लिए कहा था कुरेमो ई देस ने यानी ये भी अच्छा है, इसमें ई यानी अच्छा भी ई इसमें सिफत है।
0: अब वक्त हुआ है मश का, तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
6: कवाई कवाई देस ने कवाई ओ मेमोरी देस ने।
0: जी सामीन, यकीनन आपने जुमलों को उम्दगी से दोहरा लिया होगा।
1: अब एक मुख्तसर मकालमा सुनिए जिसमें तहाइफ की दुकान में मौजूद एक टी शर्ट के बारे में गाहक अपना तासुर बयान कर रहा है।
7: मीते कोनो टी शर्ट्स
8: ओमोशिरोई देस ने।
1: अब इस मकालमे की तशरीह।
7: मीते कोनो टी शर्ट्स,
0: देखो ये टी शर्ट।
1: मीते ये फेल मीरू यानी देखना की ते शक्ल है, जो किसी से कुछ करने के लिए कहने का बेतकल्लुफाना अंदाज है। कोनो के मायनी है ये, और टी शर्ट्स दरअसल टी शर्ट का जापानी तलफ्फुज है।
8: ओमोशिरोई देस ने,
0: दिलचस्प है ना।
1: इस जुमले में भी एक ई इसमें सिफत ओमोशिरोई यानी दिलचस्प इस्तेमाल हुआ है, और ने अपनी बात की तायीद चाहने का एक अंदाज है।
0: तो सामीन सुनिए और दोहराइए।
6: ओमोशिरोई ओमोशिरोई देस ने।
1: और अब अपना तासुर बताने की मशक। फर्ज कीजिए आप किसी बेकरी में हैं जो मज़ेदार डबल रोटी के लिए मशहूर है। वहाँ आप तवक्को से बड़ी डबल रोटी देखकर हैरान रह जाते हैं। हैरानी के इस तासुर के लिए आप कहेंगे इतनी बड़ी, तो बड़ी को कहते हैं
6: ओ की ओ की।
1: सामीन कोशिश कीजिए।
7: ओ की देस ने ओ की देस ने।
1: अब तसव्वुर करें कि आप तहाइफ की किसी दुकान में हैं और एक खूबसूरत बटवा देखते हैं, लेकिन इसकी कीमत आपकी तवक्को से भी ज़्यादा है। आप अपनी हैरानी का इजहार यूं करेंगे, बहुत महंगा है। महंगा की जापानी है
6: थकाई थकाई।
7: थकाई देस ने थकाई देस ने।
0: जी सामीन, उम्मीद है आपने तलफ्फुज की दुरुस्त अदायगी कर ली होगी।
1: और अब इजाफी मालूमात का कॉर्नर। आज का जुमला ताम का जुमला है, इसे इसी तरह याद कर लें।
2: कुरेओ कुदासाई।
1: कुरेओ कुदासाई यानी ये दीजिए, इसमें कुदासाई के मायने हैं दीजिए। जब आप किसी दुकान से कोई चीज़ खरीदना चाहें या रेस्तोरान में किसी चीज़ का ऑर्डर देना चाहें, तो सिर्फ उस चीज़ की जानिब इशारा करते हुए कहें कुरेओ कुदासाई।
0: अब ये जुमला मुख्तलिफ अफराद की आवाज़ में सुने।
9: कुरेओ कुदासाई
10: कुरेओ कुदासाई
11: कुरेओ कुदासाई।
0: अब आप इसे दोहराइए।
1: अब आज का मकालमा एक बार फिर सुनिए। उन हिस्सों पर खुसूसी ध्यान दें जिनमें ताम तावीज़ों के बारे में अपने तासुरात का इजहार करती है।

ये NHK World Japan की हिंदी रेडियो सेवा है। ये प्रसारण शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज पर दक्षिण पश्चिम एशिया क्षेत्र के लिए है। समय हुआ है UTC अपराह्न 3:30 बजे यानी भारतीय समयानुसार रात 9 बजे। हमारी प्रसारण सूची और ताजा समाचारों के लिए देखें हमारी वेबसाइट nhk.jp/hindi।

टोक्यो से एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा में आपका स्वागत है। जापान के समयानुसार 18 मई सोमवार रात 11:30 बजे गुरजिंदर सकू और वरुण तोमर से सुने समाचार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान से मांग की है कि वो युद्ध समाप्त करने से जुड़ी अमरीकी शर्तें मान ले ताकि कोई समझौता किया जा सके। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी कि समय तेजी से बीत रहा है। ट्रंप ने रविवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, ईरान के लिए समय तेजी से बीत रहा है और उन्हें जल्द से जल्द कदम उठाना चाहिए, वरना वो नहीं बचेंगे। अमरीकी समाचार वेबसाइट एक्सियोस ने ट्रंप के एक फोन कॉल के हवाले से कहा, हम समझौता करना चाहते हैं, उन्होंने हमारी सारी शर्तें नहीं मानी हैं, उन्हें वो माननी होंगी अन्यथा उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ईरान सरकार की करीबी फार्स न्यूज एजेंसी ने रविवार को बताया कि अमरीका ने ईरान के नवीनतम प्रस्तावों के जवाब में 5 शर्तें रखी हैं। एजेंसी के अनुसार ईरान ने सभी मोर्चों पर, विशेष रूप से लेबनान में, युद्ध समाप्त करने, ईरान पर लगे प्रतिबंधों को हटाने, ईरान की जब्त परिसंपत्तियों को मुक्त करने, युद्ध से हुए नुकसान के लिए मुआवजा देने और होर्मुज जलडमरू मध्य पर ईरान की संप्रभुता को मान्यता देने की मांग की है। मीडिया एजेंसी के अनुसार वॉशिंगटन ने 5 शर्तें रखी थीं, जिनमें मुआवजा न देने, ईरान की जब्त परिसंपत्तियां मुक्त न करने, अमरीका को ईरान का 400 किलो संवर्धित यूरेनियम सौंपने, ईरान की केवल एक परमाणु सुविधा को सक्रिय रहने देने और युद्ध समाप्ति शामिल हैं। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी के अधिकारियों का कहना है कि ड्रोन हमले के कारण एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र के परिसर में स्थित एक इलेक्ट्रिकल जनरेटर में आग लग गई है। अधिकारियों ने रविवार को घोषणा की कि देश के पश्चिमी हिस्से में स्थित बाराका परमाणु ऊर्जा संयंत्र में आग लग गई। अधिकारियों ने बताया कि किसी के घायल होने की कोई खबर नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि आग से संयंत्र की महत्वपूर्ण प्रणालियों पर कोई असर नहीं पड़ा है और सभी इकाइयां सामान्य रूप से काम कर रही हैं। खबरों के अनुसार रेडियोधर्मी सुरक्षा स्तरों में कोई बदलाव नहीं आया है। यूएई के रक्षा मंत्रालय ने बताया कि पश्चिमी सीमा की ओर से 3 ड्रोन देश में घुसे, जिनमें से 2 को सफलतापूर्वक मार गिराया गया, लेकिन तीसरा ड्रोन जनरेटर से जा टकराया। मंत्रालय ने कहा कि इन हमलों के स्रोत का पता लगाने के लिए जांच जारी है। गौरतलब है कि ईरान द्वारा यूएई पर कई हमले किए गए हैं। इस महीने की शुरुआत में यूएई ने घोषणा की थी कि ईरान ने उस पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य DRC और युगांडा में फैले इबोला के प्रकोप को अंतर्राष्ट्रीय चिंता का विषय मानते हुए जन स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। रविवार को DRC के पूर्वोत्तरी प्रांत इटूरी में इबोला के प्रकोप की पुष्टि होने के बाद ये घोषणा की गई। अफ्रीकी संघ की जन स्वास्थ्य एजेंसी ने 87 संदिग्ध मौतों की सूचना दी है। WHO के अनुसार DRC से युगांडा गए लोगों में से 2 में संक्रमण का पता चला है। उसका ये भी कहना है कि शुरुआती नमूनों में उच्च संक्रमण दर को देखते हुए ये प्रकोप मौजूदा अनुमान से कहीं अधिक व्यापक हो सकता है, जिससे इस प्रकोप के स्थानीय और क्षेत्रीय स्तर पर फैलने का गंभीर खतरा है। WHO का कहना है कि अभी ये प्रकोप महामारी के स्तर तक नहीं पहुंचा है। इटूरी प्रांत कई अहम खनिज खदानों वाले उस क्षेत्र के निकट है जिस पर सरकार विरोधी ताकतों का प्रभावी नियंत्रण है। WHO ने प्रकोप का जायजा लेने और प्रतिक्रिया प्रयासों में समन्वय लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का आह्वान किया है।

ये समाचार एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से प्रसारित किए जा रहे हैं। टोक्यो के उत्तर में तोचिगी प्रीफेक्चर में एक परिवार पर हुए जानलेवा हमले के सिलसिले में जापान पुलिस ने 20 से अधिक उम्र के एक दंपति को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही इस मामले में अब तक 6 लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। जांचकर्ताओं का मानना है कि कम से कम एक और व्यक्ति ने संदिग्धों को निर्देश दिए थे। बृहस्पतिवार को तोचिगी प्रीफेक्चर के खामिनोखावा नगर में कई लोगों ने एक मकान में घुसपैठ कर एक 69 वर्षीय महिला की चाकू मारकर हत्या की और उसके 2 वयस्क बेटों को घायल कर दिया जो खेत में काम करके घर लौटे थे। पुलिस ने रविवार को 25 वर्षीय ताकेमाए मियू को डकैती और हत्या के संदेह में गिरफ्तार किया जो टोक्यो के निकट खानागावा प्रीफेक्चर की रहने वाली है। पुलिस ने उसे योकोहामा शहर स्थित एक होटल के कमरे से हिरासत में लिया जहां वो अपनी 7 माह की बेटी के साथ ठहरी थी। इससे पहले रविवार को ही पुलिस ने इस महिला के 28 वर्षीय पति ताकेमाए काइतो को टोक्यो के हानेदा हवाई अड्डे पर गिरफ्तार किया था जहां से वो विदेश जाने की फिराक में था। पुलिस के अनुसार इस मामले में एक अज्ञात और अस्थायी आपराधिक गिरोह का हाथ है। इस तरह के गिरोह सोशल मीडिया के जरिए हमलावरों की भर्ती करते हैं। इस मामले में खानागावा प्रीफेक्चर के 4 छात्रों को डकैती और हत्या के संदेह में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। माना जा रहा है कि हाईस्कूल में पढ़ने वाले इन 16 वर्षीय छात्रों ने हमला किया था। अधिकारियों का मानना है कि रविवार को गिरफ्तार किए गए दंपति ने इन छात्रों को निर्देश दिए थे। जापान की अर्थव्यवस्था पर कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के दुष्प्रभावों को लेकर बढ़ती चिंताओं के कारण देश की मानक दीर्घकालिक ब्याज दर 29 वर्षों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। सोमवार को जापान के 10 वर्षीय सरकारी बंधपत्रों की ब्याज दर 2.8% तक पहुँच गई। ब्रोकरेज कंपनी जापान बॉन्ड ट्रेडिंग का कहना है कि इससे पहले ये स्तर मई 1997 में देखा गया था। निवेशकों को चिंता है कि तेल की उच्च कीमतों के कारण व्यापार घाटा हो सकता है। पश्चिमी टोक्यो के ओकुतामा नगर में पहाड़ी रास्ते पर चलते समय एक व्यक्ति भालू के हमले में घायल हो गया है। पुलिस का कहना है कि दमकल कर्मियों को रविवार दोपहर करीब 12 बजे नगर के साकाई क्षेत्र में हुए इस हमले की सूचना मिली। व्यक्ति ने अन्य लोगों को बताया कि उस पर एक भालू ने हमला किया है। कथित तौर पर व्यक्ति के चेहरे और हाथों पर गंभीर चोटें आई हैं। खबरों के अनुसार अस्पताल ले जाते समय वो होश में था और उसकी जान को कोई खतरा नहीं है। नगर अधिकारियों का कहना है कि ये व्यक्ति अकेला जा रहा था कि तभी उसके सामने भालू आ गया। टोक्यो महानगर सरकार द्वारा संकलित भालू नक्शे के अनुसार अप्रैल से ओकुतामा नगर में 7 जगहों पर भालू

0: लिखे गए हैं, जिनमें से एक जगह साकाई क्षेत्र है जहां 4 मई को भालू देखा गया। खबरों के मुताबिक ये हमला आबादी वाले इलाके से लगभग 1 किलोमीटर दूर हुआ।
1: इसी के साथ NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा से समाचारों का ये अंक समाप्त होता है।
2: ये है NHK वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा। भारत में हमारे प्रसारण का आनंद आप ले सकते हैं रात 9 बजे से शॉर्टवेव 11655 किलोहर्ट्ज़ पर। हमारा सजीव प्रसारण nhk.jp/hindi पर भी सुना जा सकता है। सुनते रहें NHK वर्ल्ड जापान।

0: एनएचके वर्ल्ड जापान की हिंदी सेवा के भाषा शिक्षण कार्यक्रम बोलचाल की जापानी में आपका स्वागत है। मैं हूं चिन्मय दीक्षित।
1: और मैं हूं सुमिता भट्टाचार्य जी। तो आइए मजे से सीखें जापानी भाषा।
0: आज 12वें पाठ में हम सीखेंगे राय बताना और समझाना।
1: वियतनाम से जापान आई विदेशी छात्रा ताम हारूसान हाउस में रहती है। वो हारूसान हाउस में ही रहने वाली चीनी फोटोग्राफर मिया के साथ टोक्यो के लोकप्रिय पर्यटन स्थल असाकुसा में आई है। अब वो सेंसोजी मंदिर में है और तावीजें देख रही है।
0: जापानी भाषा में तावीज को ओमामोरी कहते हैं और उन्हें शुभ माना जाता है। तो आइए सुनते हैं 12वें पाठ की बातचीत।
2: これ、かわいいお守りですね。
3: 本当、かわいい。
2: これもいいですね。
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
5: 縁結び、
3: 恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
1: अब इस बातचीत को फिर से हर वाक्य के अर्थ के साथ सुनते हैं।
0: ताम ने एक तावीज उठाया जिसमें घंटी लगी हुई थी और कहा,
2: कोरे कावाई ओमामोरी देसु ने।
1: ये प्यारा तावीज है ना?
0: मिया ने सहमति दिखाते हुए कहा,
3: होंतो कावाई।
1: सचमुच प्यारा है।
0: ताम को एक और तावीज भी पसंद आया,
2: कोरे मो ई देसु ने।
1: ये भी अच्छा है।
0: फिर कर्मचारी ने बताया,
4: सोरे वा एनमुसुबी नो ओमामोरी देसु।
1: वो एनमुसुबी का तावीज है।
4: 800 yen
1: का है।
0: ताम को ठीक से समझ नहीं आया कि कर्मचारी ने क्या कहा है।
1: एनमुसु।
0: तब मिया ने समझाया,
3: एनमुसुबी, कोइबितो गा देकिरु ओमामोरी।
1: एनमुसुबी, प्रेमी मिलने का तावीज।
0: ये सुनकर ताम ने कर्मचारी से वो तावीज देने को कहा।
2: जा, कोरे ओ कुदासाई।
1: तो फिर ये दे दीजिए।
0: ओमामोरी तरह तरह के होते हैं, व्यापार में सफलता के लिए, सड़क दुर्घटना से बचने के लिए या परीक्षा में अच्छे अंक पाने के लिए। इनके अलावा यहाँ बहुत तरह के ओमामोरी और भी मिलते हैं। ताम ने जोड़ी बनाने वाला तावीज चुना।
1: आज का मुख्य वाक्य है
2: कावाई ओमामोरी देसु ने,
1: यानी प्यारा तावीज है ना। इस वाक्य को याद करके आप अपनी राय बता सकेंगे।
0: इस वाक्य में
6: कवाई
0: एक विशेषण है और इसका अर्थ है प्यारा।
6: ओमामोरी
0: का मतलब है तावीज।
6: देस
0: का अर्थ हिंदी के है जैसा होता है और उसके बाद
6: ने
0: लगाने का अर्थ है कि आप दूसरे व्यक्ति की सहमति की उम्मीद करते हैं, यानी आपको लगता है कि उसकी राय भी आपकी राय की तरह होगी।
1: आज के वाक्य में ध्यान देने वाली बात यह है कि विशेषण
6: कवाई
1: की अंतिम ध्वनि ई है। इस तरह जिन विशेषणों की अंतिम ध्वनि ई होती है उन्हें ई विशेषण कहते हैं। विशेषण उस संज्ञा से पहले लगता है जिसकी वो विशेषता बताता है, जैसे
6: कवाई ओमामोरी,
1: यानी प्यारा तावीज।
0: लेकिन मिया के वाक्य में संज्ञा नहीं है। उसने कहा होंतो कवाई, यानी सचमुच प्यारा है।
1: इस तरह ई विशेषण का उपयोग संज्ञा के बिना भी हो सकता है, जैसे
6: कवाई
1: यानी प्यारा है। अंत में
6: देसुने
1: जोड़ने से बनता है
6: कवाई देसुने।
1: इससे वाक्य और विनम्र बन जाता है।
0: आज की बातचीत में ताम का एक और वाक्य है
6: कोरे मो ई देसुने,
0: यानी ये भी अच्छा है। इसमें एक और ई विशेषण आया है जो ई यानी अच्छा है।
1: तो सुनिए और दोहराइए।
6: कवाई, कवाई देसु ने, कवाई ओमामोरी देसु ने।
0: अब एक छोटी सी बातचीत सुनते हैं जिसमें दो लोग एक टी शर्ट के बारे में बात कर रहे हैं।
7: この T シャツ
8: 面白いですね。
1: और अब समझ लेते हैं इसका अर्थ। पहले एक महिला ने कहा,
5: मीते कोनो टी-शर्ट्स,
1: देखो ये टी-शर्ट।
0: यहाँ
6: मीते
0: क्रिया
6: मीरु
0: यानी देखना का ते रूप है। किसी को अनौपचारिक तरीके से कुछ दिखाते समय इसका इस्तेमाल होता है।
6: कोनो
0: का अर्थ है ये और
6: टी-शर्ट्स
0: का मतलब है टी-शर्ट।
1: उसके बाद आदमी ने कहा,
7: ओमोशिरोई देसुने,
0: दिलचस्प है ना।
1: इस वाक्य में ई विशेषण
6: ओमोशिरोई
1: यानी दिलचस्प या मजेदार का इस्तेमाल हुआ है। अंत में ने लगाकर बोलने वाला सुनने वाले की सहमति की उम्मीद कर रहा है।
0: तो आप भी सुनिए और दोहराइए,
6: ओमोशिरोई ओमोशिरोई देसुने।
1: अब राय बताने का अभ्यास करते हैं। मान लीजिए आप एक बेकरी में हैं जो स्वादिष्ट ब्रेड के लिए प्रसिद्ध है। वहां आप ये देखकर चौंक गए कि ब्रेड बहुत बड़ी है, तो आपको बोलना है, बड़ी है ना। बड़ी को जापानी भाषा में कहते हैं
6: ओकी ओकी।
1: तो कोशिश कीजिए,
5: ओकी देसु ने।
0: अब मान लीजिए कि आप एक दुकान में हैं जहां आपने बहुत सुंदर बटुआ देखा है, लेकिन उसकी कीमत बहुत ज्यादा है। आप बोलना चाहते हैं महंगा है ना। महंगा को जापानी भाषा में कहते हैं
6: थकाई थकाई।
0: तो कोशिश कीजिए,
5: थकाई देसु ने।
1: अब बारी है आज के सहज वाक्य की, जो ताम की पंक्ति है। आप भी याद कर लीजिए,
2: कोरे ओ कुदासाई।
6: कोरे ओ कुदासाई
0: का अर्थ है ये दे दीजिए।
6: कुदासाई
0: का मतलब है कृपया दीजिए। खरीदारी करते समय अपनी पसंद की चीज की तरफ इशारा करते हुए ये शब्द बोल सकते हैं।
1: या रेस्टोरेंट में हो तो मेन्यू में अपनी पसंद के व्यंजन की तरफ इशारा कीजिए और कहिए
6: कोरे ओ कुदासाई।
1: रेस्टोरेंट के कर्मचारी आपकी बात समझ जाएंगे।
0: अब ये वाक्य फिर से सुनिए और बोलने का अभ्यास कीजिए,
6: कोरे ओ कुदासाई।
1: तो दोस्तों, अब आज की बातचीत एक बार फिर सुन लेते हैं।
2: कोरे कवाई ओ मामोरी देसु ने।
3: होंतो कवाई।
2: कोरे मो ई देसु ने।
4: それは縁結びのお守りです。800円になります。
2: 縁
3: 結び、恋人ができるお守り。
2: じゃあ、これをください。
8: ミーヤーのトラベルガイド。
0: और अब बारी है अंश घूमे मिया के साथ की। आज की बातचीत सेंसोजी मंदिर में हो रही थी, इसलिए आज हम बताएंगे जापान के शिंतो और बौद्ध मंदिरों के बारे में।
1: शिंतो मंदिर यानी श्राइन और बौद्ध मंदिर पूरे जापान में फैले हुए हैं। अधिकतर श्राइनों में जापान के प्राचीन धर्म शिंतो के देवी देवताओं की पूजा की जाती है, जबकि बौद्ध मंदिर बौद्ध धर्म को समर्पित हैं।
0: श्राइन और बौद्ध मंदिर पर्यटकों में भी लोकप्रिय हैं। इसके प्रमुख कारण हैं इन मंदिरों का वास्तुशिल्प, इनमें देखी जा सकने वाली बौद्ध प्रतिमाएं और अन्य कलाकृतियां, और इनके अद्भुत बगीचे।
1: टोक्यो में सेंसोजी मंदिर के अलावा मेजी जिंगू श्राइन लोकप्रिय है। जापान के पश्चिमी क्षेत्र में नारा शहर है, जहां का तोदाईजी मंदिर भगवान बुद्ध की विशालकाय प्रतिमा के लिए प्रसिद्ध है।
0: इसके अलावा शिमाने प्रिफेक्चर की इज़ुमो ताइशा श्राइन पौराणिक कथाओं के लिए जानी जाती है।
1: दोस्तों, आशा है बोलचाल की जापानी का आज का पाठ आपको पसंद आया होगा।
0: अगले पाठ में सुनेंगे रोबोट मकान मालकिन हारूजी से ताम की मजेदार बातचीत। तब तक के लिए
1: सायोनारा।

ये खबरें एनएचके वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से नशर की जा रही हैं और अब कुछ मजीद खबरें। जापानी पुलिस ने टोक्यो के शिमाल में तोचिगी प्रीफेक्चर में एक खानदान पर जानलेवा हमले के सिलसिले में 20 के बेटे के एक जोड़े को गिरफ्तार कर लिया है। इससे गिरफ्तार अफराद की तादाद 6 हो गई है। तफ्तीशकारों का ख्याल है कि कम अज कम एक और शख्स ने मुश्तबा अफराद को हिदायत दी थी। जुमेरात को तोचिगी प्रीफेक्चर के कामी नोकावा कस्बे में मुतअद्दिद अफराद एक घर में घुस गए। एक 69 साल खातून को चाकू के वार करके कत्ल कर दिया गया। इसके दो बालिग बेटे उस वक्त जख्मी हो गए जब वो फार्म पर काम करके घर वापस आए। पुलिस ने इतवार को डकैती और कत्ल के इल्जाम में 25 साल थाके माई म्यू को गिरफ्तार कर लिया। वो टोक्यो के करीब कानागावा प्रीफेक्चर से है। इसे योकोहामा शहर के एक कारोबारी होटल से हिरासत में लिया गया। वो 7 माह की बेटी के साथ एक कमरे में थी। कबल अजी इसी रोज उसके शोहर को टोक्यो के हनेदा हवाई अड्डे से गिरफ्तार किया गया था। 28 साल थाके माए काइतो बैरून मुल्क सफर करने ही वाला था। पुलिस का ख्याल है कि इस केस में एक गुमनाम और वक्ती मुजरिम ग्रोह मुलविस है। ऐसे ग्रोह हमलावरों को भर्ती करने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। इससे पहले कानागावा प्रीफेक्चर से हाई स्कूल के 4 16 साल तालबे इल्मों को डकैती और कत्ल के शुबे में गिरफ्तार किया गया है। ख्याल किया जाता है कि वो हमला आवर हैं। हुकाम का ख्याल है कि इतवार को गिरफ्तार किए गए जोड़े ने तालबे इल्मों को अहकाम दिए थे। जापान की मईशत पर खाम तेल की बढ़ती हुई कीमतों के असरात पर तशवीश में इजाफे ने मुल्क की तवील मुद्दती कलीदी शराय सूद को 29 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंचा दिया है। जापानी हुकूमत के 10 साल बॉन्ड्स का मुनाफा पीर के रोज 2.8% तक पहुंच गया। लेन देन से मुंसलिक कंपनी जापान बॉन्ड ट्रेडिंग का कहना है कि आखिरी बार ये सतह पर मई 1997 में पहुंचा था। सरमायाकारों को तशवीश है कि तेल की कीमतों में इजाफा तिजारती खसारे का बाइस बन सकता है। टोक्यो के मगरब में वाकया ओकुथामा कस्बे में पहाड़ी रास्ते पर चहलकदमी करने वाला एक शख्स रीछ के हमले से जख्मी हो गया है। पुलिस का कहना है कि फायर फाइटर्स को इतवार के रोज लगभग दोपहर के वक्त करीबी साकाई इलाके में वाकये की इतला देने वाली कॉल मौसूल हुई। इस शख्स को बजाहिर चेहरे और बाजुओं पर शदीद चोटें आईं। उसने दीगर अफराद को बताया कि उस पर रीछ ने हमला किया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि जब उसे हवाई जहाज से अस्पताल ले जाया गया तो वो

0: होश में था और उसकी हालत तश्वीशनाक नहीं थी। कस्बे के हुकाम का कहना है कि जब इस शख्स पर रीछ ने हमला किया वह अकेला चहलकदमी कर रहा था। टोक्यो बल्दियाए उज़्मा का मुरतब करदा रीछ देखे जाने की इतलात पर मबनी नक्शा अप्रैल से अब तक ओकुतमा कस्बे में इसकी 7 इतलात दिखा रहा है, जिनमें 4 मई को साकाई इलाके की एक रिपोर्ट भी शामिल है। इतलात के मुताबिक यह हमला आबाद इलाके से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर हुआ है।
1: अब आज की अहम खबरों की शह सुर्खियां। अमरीकी सदर ने ईरान को खबरदार किया है कि वक्त गुजर रहा है और जोर दिया है कि जंग खत्म करने के मुआहदे के लिए वो रियायत दे। मुतहदा अरब अमारात के दारुलहुकूमत अबूधाबी में हुकाम के मुताबिक एक ड्रोन हमले के नतीजे में एक जौहरी बिजली घर के अहाते में बरकी जनरेटर में आग लग गई। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।